लोग संभ कोर मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिपे माम अगर दुखा दर समाज